0: दोस्तों साथियों को पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के एपिसोड में। मैं हूं प्रेम डॉक्टर विनेश, और जैसे मैंने पहले कहा था हमारे पास कुछ गेस्ट है जो जुड़ेंगे हमारे साथ में आगे चल के। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो दुर्गा उत्सव इन आई वेरी बेंगोली वे, और ये जो ग्रुप है बंगालियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्ट चर्च, उससे हम बात करते चलेंगे। और फिलहाल के लिए आप ये जो गीत सुन रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, वाज दिस जब शाहरुख खान ने इसमें काम किया था?
1: जी हाँ, इट्स फ्रॉम अ मूवी दिल से। ये जो ट्रेन के ऊपर नाच रहे थे।
0: जी हाँ, एंड दिस इज द अनदर फेवरेट सॉन्ग ऑफ साहिल, एंड वी गॉट निको इज, और आई थिंक इट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, मे बी द फर्स्ट टाइम दैट वी विल बी स्पीकिंग टू निको ऑन एयर। सो निको, जस्ट टू लेट यू नो, वी आर ऑन एयर एट द मोमेंट,
1: uh-huh,
0: or life on air.
1: I get that much.
0: Okay, that's great. Welcome on board. So do you celebrate Christmas?
1: My parents love to celebrate Christmas, so I get dragged along with that. So I have to go to all the family gatherings and whatnot.
0: Okay, do you get presents?
1: Yeah, that makes up for it, having to bike over to who knows where.
0: Okay, that's good. And are you kind of, do you have to give a kind of provide or give presents in return?
1: I give a little bit of something, but usually my dad just likes chocolates and my mom likes the same.

0: driving lessons, and contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथियों आपको स्वागत करते हैं दिलचस्प फिजी रेडियो में। मैं हूँ प्रवीण विनेश, और जो लोग हमें फेसबुक पे जुड़ रहे हैं उनको भी हम स्वागत करना चाहेंगे और कहेंगे शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड होप यू आर एंजॉइंग द न्यू स्प्रिंग दैट वी आर हैविंग। स्प्रिंग शुरू हो चुका है, सो आई नो यू आर एंजॉइंग और प्लांटिंग वगैरह जो कुछ भी करना है। इट्स अ गुड टाइम, फन टाइम, और होपफुली कुछ ठंड तो हो गई थी। लेट्स होप कि वी स्टार्ट हिटिंग द वार्मर वेदर नाउ। और शुक्रिया करना चाहेंगे साहिल फॉर पेनलिंग एंड साथ साथ निको हु इज हेल्पिंग अस विद द वीडियोग्राफी टुडे। और जैसे हमने शुरू में जो लोग हमारे साथ में फ्रीक्वेंसी पे थे हमने मेंशन किया था कि हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्राइस्टचर्च दुर्गा उत्सव जो हर साल होता है और इस साल भी होने वाला है। सो वी हैव गॉट अक्षत, सोफिया एंड संदीप फ्रॉम बंगालियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्टचर्च। तो सभी लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, ये कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस पर्टिकुलर डे जो इवेंट हम कहेंगे शेड्यूल क्या है, और व्हाट टू बी एक्सपेक्टेड from you and what you can expect on the day when you come. और इससे पहले हम शुरू करें अपना इंटरव्यू, एक चीज और भी आपको याद दिला दे, इट्स बिल्कुल फ्री, सो डोंट हुक ऑफ, प्लीज लिसन एंड व्यू द वीडियो, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री इवेंट है और पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं टुडे ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। तो चलो हम स्वागत करते हैं अक्षत, सोफिया एंड संदीप, थैंक यू फॉर कमिंग, टेकिंग योर टाइम। आई नो इट्स अ सैटरडे, वैसे भी सैटरडे को तो बहुत कुछ और भी हमारे करने को रहता है। आई नो यू शुड हैव गार्डनिंग एंड बहुत वगैरह, शायद कपड़े भी आपका बाहर सूख रहा होगा एंड यू विल बी वरीड कि आपको वापस जाकर उठाना भी, बट कोई बात नहीं, विल ट्राई टू मेक इट फास्ट एज वेल। तो चलो अक्षत, तब से शुरू करते हैं और आने के लिए शुक्रिया। सो आप बताइए कि आपका दिन आज कैसे बीता एंड हाउ एक्साइटेड यू आर विद दिस प्रोग्राम।
1: Yes, thank you so much for having us, and namaste and greetings to all the listeners. Mera naam Akshat hai and I'm a part of the Christchurch Durga Utsav committee which is led by the Bangaliana multicultural group. Aaj ka din Saturday hai. I think Saturday is one of the best part of the week because you know tomorrow is a holiday and the whole week is behind you, so bahut acha din tha, kuch kara nahi jyada, but jaise aapne bola wife ne bahut sare kapde dhoye hain to ab unko sukhane dalna hai, fir unko wapas leke aana hai, और जो वाइफ बोलेगी वो करना है।
0: जी वो तो है, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर, कोई भी सीजन हो
1: जी।
0: एनीवे सोफिया जी, आपको भी हम स्वागत करते हैं। आई नो यू आर प्रीटी एक्साइटेड विद दिस पूजा। और चलो इससे पहले हम आपसे और सवाल करें, एक सवाल है कि वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम।
2: वेल, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार
0: जी,
2: मैं बिहार से हूँ, मेरा होम टाउन पटना है
0: जी।
2: सो दुर्गा पूजा इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। हम लोग बंगाल और वहाँ के कल्चर से बहुत हमारा मिलता जुलता है। मेरी फैमिली में भी वी हैव बंगाली फैमिली मेम्बर्स एंड स्टफ, तो बहुत घुलना मिलना है उस कल्चर के साथ। और दुर्गा पूजा तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है मेरे लिए।
0: जी हाँ, आई नो व्हेन इट कम्स टू दुर्गा पूजा देन इट्स आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हम कहेंगे जो फेस्टिवल है विथ जो बंगाली कम्युनिटी के लिए, एंड इट्स रिलीजियस भी हम कहेंगे, इट्स रिलीजियस फेस्टिवल। एंड एक्चुअली मैंने बस गूगल करा था, इट्स लिस्टेड एज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सिंस 2021। सो ये तो काफ़ी बड़ी बात है कि इट हैज़ बीन ये जो उसको पदवी दी गई है, एंड दैट्स क्वाइट वंडरफुल। एंड स्पेशली हम जो कोलकाता कहेंगे, वेन एवर इट कम्स टू दुर्गा पूजा देन इट्स डायरेक्टली हम कोलकाता एंड बंगाल की बात शुरू कर देते हैं, बट ये भी सही बात है कि ये जो पूजा है इट इज़ स्प्रेडिंग, और मे बी पहले से स्प्रेड हो चुका होगा, बट इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे आपने बिहार मैंशन किया, देन ऑफकोर्स वी हैव नेपाल एंड मेनी अदर, सम काफी जगह पे मनाई जाती है।
2: गुजरात में जहाँ पे मेरी फैमिली अब सेटल्ड है, वहाँ पर नवरात्रि के नाम पर जाना जाता है, तो उस दिन वो पूरे 9 दिन पूजा होती है, गरबा होता है, बहुत सारे लोग को जानते हैं गरबा, डांडिया, वो सब चीज वो उन 9 दिनों में किया जाता है। सो पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरे टॉप ऑफ इंडिया में जाना जाता है दुर्गा पूजा, और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड गॉडेसेस दैट वी प्रे टू इन द हिंदू कल्चर।
0: जी हाँ, इससे पहले हम संदीप से सवाल करें, बिकॉज़ आना संदीप इज क्वाइट एक्साइटेड, काफ़ी देर से वेट कर रहा है, लेकिन बिफोर यू गो टू

0: कैन यू सोफिया, हमें जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनको कुछ क्विकली बता सके इस पर्टिकुलर पूजा के विषय में, विच इज कृषश दुर्गा उत्सव फेस्टिवल 2026, एंड आई थिंक ये तो काफी सालों से मन रहा है. दिस इज अनदर ईयर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेम्पलटन हॉल में.
1: यस सर, ये पूजा हो रहा है 17th अक्टूबर को टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर में. सो इट्स प्रीटी मच फुल डे इवेंट. आप सुबह 11 बजे से आकर के पुष्पांजलि होगी. देयर इज प्योर वेजिटेरियन लंच. सो प्लीज ब्रिंग योर फैमिली टुगेदर. बच्चों के लिए एक्टिविटीज होंगे, बड़ों के लिए है भी. और फिर हम लोग कल्चरल इवेंट करेंगे जिसमें हम लोग ढाक करेंगे. लास्ट में सिंदूर खेला होने वाला है. सो इट्स अ फुल डे इवेंट. सबके लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होने वाला है. सब कोई को एंगेज करने के लिए पूजा है. सो या दैट इज व्हाट द इवेंट इज अबाउट.
0: जी हाँ बिल्कुल. तो अगर आप सुन रहे हैं तो डेट आप मार्क कर लीजिए. इट्स 17th of October. इट फॉल्स ऑन अ सैटरडे. 11 AM ऑनवर्ड्स आप जा सकते हो टेम्पलटन हॉल, जो 64 के क्राउड इन टेम्पलटन है. और फ्री इवेंट है वंस अगेन, एंड भोजन भी रहेगा. डिनर भी आप कह सकते हो. देट इज गोइंग टू बी देयर फुल वेजिटेरियन. सो गो देयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, सभी को ले जा सकते हो. एंड इट्स बिल्कुल फ्री. एंड गोइंग टू संदीप. संदीप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर फ्रॉम बंगाल योरसेल्फ.
2: यस.
0: जी हाँ, तो बचपन की बात बताइए कि शुरू में जब ये जो कृषश दुर्गा पूजा होता था तो कितने एक्साइटेड थे आप, क्या ये पूजा आ रही है? हैव यू बीन वेटिंग फॉर द 11 मंथ्स?
2: ऑब्वियसली, क्योंकि दुर्गा पूजा बंगाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल है.
0: yeah.
2: तो हम लोग लाइक होल ईयर वेट करते थे कि कब ये टाइम आए.
0: एंड देन यू गैंग अप विद योर अदर फ्रेंड्स,
2: अदर फैमिली मेंबर्स जो बाहर रहते हैं, सारे एक टाइम सारे एक जगह होते हैं. तो नए कपड़े सबसे फिर सब ये जो फेस्टिवल के जो चार दिन होते हैं, तो डिफरेंट फूड. सो कलकत्ता में ये तो बहुत बड़ा चीज़ है. इवन आउटसाइड कलकत्ता भी अभी तो
0: स्प्रेड हो रहा है. इवन तो हम तो न्यूजीलैंड में है, अगर आप हमें देख रहे हो, इट्स क्राइसिस इन न्यूजीलैंड, देन यू कैन इमेजिन कि हाउ किस तरह सभी कंट्रीज में स्प्रेड हो रही है. एंड देन चलो हम आपके थोड़े बड़े कर देते हैं, गोइंग इनटू योर मोर लाइक टीनेज डेज. तो दैट मस्ट बी वन ऑफ दोस एक्साइटिंग टाइम्स ना, दोस्तों के साथ में निकल पड़ो.
2: 100%
0: क्या कहते हैं, पंडाल जंप.
2: 100% वो चार पांच दिन तो हम लोग सोते भी नहीं थे. लाइक सारा दिन घूमना, खाना पीना, ये बस मौज मस्ती, ये सारे कुछ करते थे क्योंकि साल में एक ही बार आते.
0: जी हाँ, और आई थिंक पीपल काफी इंटरेस्ट लेके सब मनाते हैं.
2: Everybody, even वो कहने का तो है बंगाली, बट सारे अदर रीजन के लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं. तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज है. तो सारे मिलके मनाते हैं. और ये
0: एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ थिंग ना, काफी आर्ट होता है व्हेन पीपल जो पंडाल हम बोलते
2: हैं. डिफरेंट टाइप का. अभी तो बहुत नया थीम का पंडाल बनते हैं उधर. और lightings everywhere. So different things.
0: बिकॉज अभी हमारा क्योंकि यहाँ पे चाइनीज फेस्टिवल होता है, हम जाते हैं जो हमारा अभी सिटी में आगे पड़े तो पार्क में था. एंड देन वो लोग लेंटर्न वगैरह लगाते हैं, एंड देन ड्रैगन्स वगैरह होते हैं. वी गो देन से वाओ हाउ ब्यूटीफुल, क्या क्रिएटिविटी हमें देखने को मिल रहा है. बट इमेजिन आप बंगाल में हो एंड बड़े बड़े पंडाल देखते हो, जो यू मस्ट बी ना काफी ऊंचे ऊंचे बनते होंगे.
2: बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट करते हैं लोग.
0: जी हाँ, और काफी दिनों से आई थिंक दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग.
2: ऑलरेडी लाइक मैं 3 हफ्ते पहले मैं इंडिया गया था जस्ट फॉर 2 वीक्स. तो ऑलरेडी
0: शुरू हो गया काम,
2: शुरू खत्म भी होने वाले हैं.
0: Wow. And I think जो मूर्ति वगैरह वहाँ बनती है, they're all kind of handmade and
2: सारे handmade
0: है. जी, तो सब शुरू हो जाता है बनने के लिए. So that we are preparing for the कृषश दुर्गा उत्सव. I think it is kind of तरह की जो एनर्जाइज करती है इकोनॉमी को भी इन अ वे.
2: जो मूर्ति जो प्रतिमा जो है तो वो जो पूजा खत्म होने के बाद से नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वो प्रिपरेशन आफ्टर दैट वो स्टार्ट हो जाता है.
0: वाओ. Yeah, that is quite wonderful. So you can imagine whatever it's like in Bengal. And Akshat, yourself, you are not from Bengal?
3: No, I'm not a Bengali, but I have stayed in Bengal for 7 years and my wife is also Bengali.
0: Oh, okay, that explains.
3: So uske baad, us wajah se I've got a lot of exposure around it. Aapne abhi murti ki aur pratima ki baat kari thi.
0: Yeah.
3: I think ye hum mere ko ye batana hai ki hamare Bangaliana multicultural group ne is baar is getting a completely new murti all the way shipped from कोलकाता टू क्राइस्टचर्च जो आ चुकी है. और ये जो इस बार की जो पूजा 17 अक्टूबर को टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर में होगी,

0: उसमें हम लोग पहली बार वो मूर्ति को सबके सामने, माता को सबके सामने आएंगे, आशीर्वाद लेने आ सकते हैं. तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. और जैसे मैंने आपको बताया, मैं कोलकाता में बड़ा हुआ था, तो हमारा बचपन उसमें होता था कि जब दुर्गा पूजा आती थी तो हर जगह ढाक बज रहा होता था. वो स्मेल, वो कलर्स, और फादर हम लोग को गोदी में उठा के मेट्रो में लेके जाते थे एक पंडाल से दूसरे पंडाल. और जब आप छोटे होते हो सब कुछ बड़ा होता है, तो हम हर पंडाल में घुसते थे, हम लोग की आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती थी कि माँ का एकदम डिफरेंट प्रतिमा हर जगह देखने को मिलती थी. इट्स अ ब्यूटिफुल. लोग पर्सनली भी घर पे बनाते हैं, कम्युनिटी में भी बनाते हैं, और फिर उसको रीजन में भी बनाते हैं. नेपाल, बिहार, उड़ीसा, इन एरियाज में भी इस दुर्गा पूजा को डिफरेंट फॉर्म्स में बहुत अच्छे से बनाया जाता है.
1: जी हाँ, और इसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होता होगा, लाइक बिहार में वो सब बताई जाती है क्यों मनाई जाती है, लाइक जो दुर्गा माँ का आई थिंक उसका भी रीजन्स होता है क्यों आई और किस तरह इन राक्षसों को लोग संहार करती है, एंड देन गुड अवाइवल. जी हाँ, सो वी एज आई सेड इट्स काइंड ऑफ वेरी मच रिलीजियसली रिलेटेड टू आवर हिंदू कल्चर, और इट्स स्प्रेडिंग सभी जगह मनाई जाती है. एंड आई थिंक अगर आप क्राइस्टचर्च में हो या तो फिर निकट हो टिमरू या एजबेटन, अभी तो रोल्स्टन अगर हम कहेंगे, इट्स हार्ड टू से रोल्स्टन बिकॉज इट्स सो नियर टू टेम्पलटन एनी वे, सो यू आर जस्ट देयर, यू आर वेरी लकी. सो जस्ट पॉप इन ऑन दैट सैटरडे एंड आपको देखने को मिलेगा द मूर्ति इट्सेल्फ. आई थिंक आप काफ़ी भाग्यशाली हो गए तो साक्षात जो मूर्ति देख सकोगे, एंड देन ऑफकोर्स दिल बी फूड. And at the same time, are you going to have last time मुझे याद है performances वगैरह भी हो रहा था.
2: Yes, so हमारा cultural event जो होगा उसमें performances होंगे. So it is ranging from kids to adults and everything is dedicated to the event. So Indian culture को represent करने के लिए there'll be classical, there will be semi-classical. So जो भी whatever जो भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, अपना कल्चर शोकेस करना चाहते हैं, वो लोग सब कोई होंगे वहाँ पे. सो या देयर इज गोना बी हीप्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड देयर इज गोना बी लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन बाय एवरीबॉडी. आई थिंक देयर इज गोना बी आई थिंक देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फेस पेंटिंग. आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी बाउंसी कैसल. किड्स कैन हैव उनका डिफरेंट टाइप शेप्स के बलून्स और वो सब बना करके दैट बलून आर्ट इज गोइंग टू बी देयर इज वेल. और वुमेन के लिए वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग सम हेना आर्टिस्ट एंड सम स्टॉल्स एंड स्टफ एज वेल. सो देयर विल बी हीप्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कम एंड एंजॉय करना है अपने आप को.
1: Wow, that sounds quite exciting. So there you go. आपको भूलना नहीं है, इट्स अ फ्री इवेंट ऑन 17th ऑफ अक्टूबर. डू मार्क योर कैलेंडर एंड कम ऑन टाइम 11. I said 11 o'clock it starts. So go there and have lots of fun. And Sandeep, just because आप तो बंगाल की हो, एंड आई नो जो पंडाल की बात हमने की, बट लाइक अगर हम सभी का अपना होम की बात करें, जो घर पे, तो घर पे क्या होता है, आप लोग सभी के घर पे इसी तरह सज जाता है?
3: हाँ, ऑब्वियसली. सो फेस्टिवल टाइम है तो सुबह से लेके रात तक लाइक मौज मस्ती होते हैं. दुर्गा पूजा एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट अ फेस्टिवल, ये लोगों के दूरियां कम कर देते हैं. लाइक जो दूर पे रहते हैं रिश्तेदार सारे आते हैं, फ्रेंड्स भी ऐसे ही है, तो एक तरह का एक गैदरिंग भी होता है जो बहुत अच्छा है. जैसे अभी सारे लोग बिजी होते हैं काम के लिए या पढ़ाई के लिए, इवन इन क्राइस्टचर्च एज़ वेल. बट वो जो दो दिन हम क्राइस्टचर्च में एक दिन जो हम क्राइस्टचर्च में जो सेलिब्रेट करते हैं, सारे लोग एक साथ होते हैं. जैसे अक्षत के साथ मेरा बहुत कम मिलना जुलना होता है, बट वो एक दिन सारे लोग बैठ जाते हैं.
1: जी हाँ, सही बात है. आई थिंक दैट्स हैपनिंग टू मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, इट जस्ट गिव्स अस अ रीजन टू गेट टुगेदर. और वही एक अच्छी बात होती है फेस्टिवल को, एंड इट्स कलरफुल. लाइक हिंदू का तो वही है कि इट हैज़ टू बी कलरफुल, सभी कलर्स का होता है. एंड सॉरी, बिफोर आई फॉरगेट, सोफिया, आई थिंक यू मेंशन सिंदूर खेला एज वेल. तो खेला, आई एम गेसिंग दैट्स खेल, दैट्स गेम, जिसे आप कुछ खेल रहे हो, और सिंदूर तो हमें पता है, तो हाउ डज दैट मिक्स अप, बिकॉज आई थिंक इट विल गेट अ बिट मेसी.
2: सो सबसे पहले तो मैं सिंदूर खेला के बारे में थोड़ा बता दूं. सिंदूर भगवान माँ को हम लोग जो सिंदूर चढ़ाते हैं वो एक आशीर्वाद होता है जो देन मैरिड वुमेन अपने लेती हैं, एंड देन इट्स अ सेलिब्रेशन कि हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, और वो बंगाली में सिंदूर खेला कहते हैं.
1: ओके,
2: यस, इट्स मेसी एंड बट इट्स अ लॉट ऑफ फन, एंड सब कोई जुड़ जाता है उसमें. हम सारी मैरिड वुमेन एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत होली जैसा होता है. सो बाय द एंड ऑफ द

0: वो एंड इवेंट के एंड में होता है एंड सबको उसमें इनवाइटेड है, जिसको पार्टिसिपेट करना है, जिसको जुड़ना है, सब कोई आ सकता है, सब कोई उसका हिस्सा बन सकता है।
1: जी हाँ, और संदीप जी जो हमारे ढाक ढाक ना बोलते हैं, तो आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रम जो प्ले करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ द आप लोगों का कोई कल्चरल ड्रम या कुछ होगा?
2: ढाक इट्स सॉर्ट ऑफ ड्रम बट इट्स नॉट एक्चुअली ड्रम। ये
1: ढपली ढपली
2: हाँ बट ये दो स्टिक्स वो
1: जी हाँ,
2: स्टिक्स
1: के साथ में बजाते हैं।
3: हाँ जी, तो हम लोग के साथ एक्चुअली जस्ट मैं संदीप जी को ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग के साथ एक लोकल ग्रुप है जो हमारे साथ बहुत सालों से परफॉर्म कर रहे हैं एंड हमारे साथ काम करते करते परफॉर्म करते करते दे हैव एक्चुअली लर्न्ड द ट्रेडिशनल ढाक म्यूजिक। तो वो हम लोग के जो कल्चर रिलेवेंट इवेंट के एंड में आएंगे और वो ढाक बजाते हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द हाईलाइट्स फॉर दैट। वो सब लोग झूम उठते हैं, सब लोग डांस करते हैं और वो जो फील आती है आपको वैसे आती है जैसे आपको ट्रेडिशनल पंडाल में जब आपका विसर्जन के टाइम होता है वैसी फीलिंग आती है। तो ढाक फेस्ट जब वो ढाक परफॉर्मेंसेस आई थिंक शुड नॉट बी मिस्ड आउट।
1: जी हाँ, तो चलो हमने काफ़ी बात की है, आई थिंक वी गिवन एज मच इन्फॉर्मेशन एज वी शुड गिव नाउ, बिकॉज बच्चे जो इन्फॉर्मेशन तो आपको आकर देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि डू यू गेट द सेम पंडाल फीलिंग। लास्ट टाइम तो मैं गया था, सो इट हैड दैट फीलिंग, पीपल वेर ऑल देयर गैदर्ड एंड एवरीबॉडी वाज इमेंस्ड इन दैट काइंड ऑफ वो एटमोसफियर क्रिएट हो गया था। सो वी आर होपिंग द सेम, और इस बार तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए बिकॉज पीपल आर ग्रोइंग, लोग आ रहे हैं दूर दूर से, एंड आई थिंक संदीप मस्ट बी डूइंग दैट एज वेल, ही इज ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। आप खींच के ला रहे हो, दैट दैट्स गुड एज वेल, सो वी गेटिंग मोर नंबर्स, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और शायद वो फील आएगा, ऐसा लगेगा कुछ लोगों की शायद हम कोलकाता में खुद बैठे हुए and there's so many people around you and having fun. So, Akshat, have you missed something? Sponsors वगैरह किसी को नाम ले?
3: हाँ, I think just आपने बहुत अच्छा point बोला। ये सब करने के लिए you need funds, you need people to support, and for us our sponsors and our have been a very important part. So मैं थोड़े sponsors हैं जिनका नाम लेना चाहूँगा। हम लोगों के साथ है Amarok Homes जिन्हें जो हमारे platinum sponsors हैं, Maruti Mortgage Services, Dev Chakrabarti और वो है Floor Arts. We have also got the team Harmony and Ace Printing and Decorations and Ishpreet Singh Ji who have been our platinum sponsors. We also have New Zealand Immigration who are the other ones and also बहुत सारे हमारे अदर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनको हम लोग शायद नाम नहीं ले पाए बट लोग पर्सनली भी डोनेट करते हैं, तो उन सब के हम बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है और हम वो हैं कि इन्हें हमारे को सपोर्ट करा इस बार और इवेंट को सक्सेसफुली करने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया।
1: थैंक यू सो मच अक्षत फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। हमें मालूम है कि जो स्पॉन्सर्स है दे प्ले अ ह्यूज रोल, बिकॉज उनके बिना तो ये नहीं हो पाएगा। ऑफकोर्स वी नीड फाइनेंस मनी टू पे फॉर द होल और जो कुछ भी आप करो, स्पेशली इट्स अ फ्री इवेंट, तो यू कैन इमेजिन दैट मनी हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर, और अच्छी बात है कि स्पॉन्सर्स आर देयर टू सपोर्ट सच कम्युनिटी इवेंट्स, और इस तरह ये जो कम्युनिटी इवेंट हो रही है एंड आपको फील मिल रहा है जैसे बंगाल में या ओडिशा और नेपाल और जगह जगह पे बिहार में भी मनाई जाती है, सो यू एक्चुअली गेट दैट फील। आप आ सकते हो, इट्स अ फ्री इवेंट, फैमिली इवेंट, आप बच्चे को ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग योर होल फैमिली टुगेदर, और अभी तो काफ़ी जो पेरेंट्स भी आ रहे हैं, सो यू कैन इवन ब्रिंग देम अलोंग बिकॉज दे विल बी एंजॉइंग सच कल्चरल इवेंट्स, एंड आई थिंक किड्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है बिकॉज दैट्स एन ईजी वे ऑफ टीचिंग देम क्या हमारा कल्चर है, हाउ रिच इट इज़, बिकॉज अदरवाइज हमें काफ़ी कुछ नहीं पता रहता या हम उसको बता नहीं सकते, बिकॉज यू कैन टेल इफ टू शो देम, और शो कैसे करोगे उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा बंगाल, बट इफ़ यू डोंट नीड टू गो देयर या अगर आपको नहीं जाना देन यू कैन जस्ट कम ओवर हियर एंड have the same kind of feel. तो हमारा समय हो चुका है, we'll play a last song before we end up, और जाते जाते just a few seconds अक्षत
3: जी, so thank you so much for having us, to all our listeners and even आपको studio में भी, 17th of October 11 AM Templeton Community Center में please join us for the Durga Puja Durga Utsav. इस बार नई मूर्ति आने वाली है, बहुत सारे fun events है family and आप सब के लिए and good food, so please join us and have a great time with us.
1: And Sophia, do you speak Bengali?
0: No, I don't speak.
1: Okay, तो हिंदी में आपको सबको वेलकम बोलना पड़ेगा।
0: हाँ, so I again just adding to अक्षत जो बोल रहे हैं कि प्लीज हमें ज्वाइन करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए, पूरा एक फुल डे का इवेंट है, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड होने वाला है, सो या प्लीज ज्वाइन अस एंड प्लीज वेलकम मा विद अस।
1: जी एंड संदीप तो बंगाली में आपके ऊपर ही जाता, सो इन बंगाली हाउ डू यू से ऑल वेलकम, सभी लोग आइए।
4: হ্যাঁ বাংলাতেই বলছি যে